बड़ी गदा छा गई, नजर मिल गई, गल गिल गई, कसम हो गया, जिया हो गया, अरे हो गया, अरे हो गया, अरे हो गया, अरे हो गया।